सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Voici Nemet Bonnevue.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तीन मास का अभ्यास, सदा काल का अनुभवी बना देगा। अगर अपन ने उमंग उत्साह से किया तो मजबूरी से किया तीन मास पास करने हैं, फिर तो सदा नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप अपने विशेषताओं को जानते हो? जानते हो? हर एक अपने विशेषता को जानते हो? जानते मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन

भ्रमण जीवन में आने के बाद पाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि पाप का बनने से some

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Pizza.

Sabiga attention.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, हर एक बच्चे को नंबर

हर बच्चे को देखना।

Big but chubby. Chaiti ye ye. Sruff. Kaka. Sak ka rang bhi lag jata. Alabele pan maga. Ho jayenge. Dono yan bahut ho kiye. Tu samajhti hai. Samay par. सोचा तो है क्या है उस पर अटेंशन दे देंगे लेकिन यहाँ अटेंशन का नोट तो होता है लेकिन बहुत काल यहाँ बहुत काल में बीच बीच में बहुत काल से रवासी चालू हो जाती है फॉरेस्ट

0: अभी तो आप सभी पुराणों की लिस्ट वाले हो, थोड़े नए नए मेजॉरिटी पुराने के लिस्ट में और फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी। तो कोई भी अपने विशेषता को सदा काल का बनाना ये आवश्यकता है, क्योंकि पेपर सदा नहीं आता है, बीच बीच में पेपर ड्रामा अनुसार होते। इसलिए सदा टेंशन बहुत अटेंशन देते भी है उनको, तो बाप दादा दीवर पुरुषार्थियों के लिस्ट में रख। अटेंशन देते हैं लेकिन कुछ समय दीवार, कुछ समय बीच में फिर पेपर आते, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने तो बहुत समय से

Beep, beep.

0: की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग रंग में प्राप्त किया है वो अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से, दिल से बांटो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yes.

Usadas.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी सेकंड में सभी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहती है God is truth। सबसे प्यारी चीज सच्चाई, क्यों जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, जिसमें सच्चाई होगी ना उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद जो

0: सच्चाई बहुत प्रिय।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी Yes।

जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। और ये बेफिक्र

के हर एक बच्चा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: शॉट इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है, तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ, ये बाप दादा को अचल, तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, पढ़ेंगे ना, सभी ने उठाया, हम सब एक है, ये तो सेवा के कारण, कोई देख रेख हो सके इसके कारण सोन बने, बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक ही रहेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे

ここをやっかれべなんです。バッピーバッチカ

बच्चों का कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है। ये नाता ही

0: सुनते नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो दिल में रहता ही। बाप भी रह नहीं सकता, बच्चे भी रह नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई है, क्योंकि संगम समय अचानक समाप्त होना है। एक समय दूसरा संकल्प दोनों की
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई का खेल होता है ना, देखा है क्या? देखा है, देखा है? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो से मारो। घबराओ नहीं, खेल है तो साखी होगा, खेल करने में मजा आता है। और माया कैसे होगा, क्या होगा, क्या पाठ पढ़े, जो होगा वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। बातें ऐसे होती हैं के बाद हुई है। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, अज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ते हैं, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो, तो परिस्थिति दो शक्तियां के अनुभवी बनाते हैं। एक सहन शक्ति न्यारापन और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है कि आगे के लिए आप सीख लो। तो ये तो माया समझ जाती है कि ये कमरा तो है, मारो अच्छी तरह से।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Come on.

एक बच्चा। आज

Fred's son.

बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे, क्या कहते हैं।

Esa.

खुश प्रोफेसर तुम्हारे सरकमस्टेंस के बार-बार बहुत टेंशन में रहते हैं। आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ा तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन खुश करने के

0: εξεπολτικό του Φόβη.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

있었다. 레겐 말릭 마스터 서브셰티와 함께 스멀티케 시트 버세토 Awesome.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है। और कभी भी हो सकता

Jake.

Thanks.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

immer gerät.

です。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सब ठीक, आराम से रहे हुए हो? मन भी आराम में, धन भी आराम में, दोनों ही आराम है ना? सीरियस नहीं रहो। अब तो सब मिल गया, बाकी क्या चाहिए? नाचो गाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा वैज्ञानिक, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, दिन प्रतिदिन साइंस महीन होती जाती। ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो, तो अपने हम जिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना देना इन्हों को। साइलेंस भी एक विज्ञान है। साइलेंस का विज्ञान क्या है उसकी पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है, तो साइंस भी ज्यादा रिफाइन कर सके। क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम में आएगा ना, बिजनेस भी होगा, लेकिन रिफाइंड रूप में होगा। अभी का विज्ञान के इन्वेंशन फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान है। ऐसे जो बड़े बड़े विज्ञानी है उनको ज्ञान दो साइलेंस का, तो फिर अपने नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान कार्य करने में मददगार बने। तैयार करो इंजीनियर्स को। चलो पूरा ज्ञान नहीं लेवे, लेकिन रेगुलर नहीं बने, लेकिन बाप को तो पहचाने। कई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनती है, लेकिन निश्चय और खुशी में रहती, संबंध में सहयोगी रहते। ऐसी आत्माएं भी तैयार करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं,

रिजल्ट में। प्रैक्टिकल पर आप सब

Ultimate.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: दादी कहती थी मेरी ये अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला शरत में कोई भी कमी अभी रह गई है उसका तो पुरशरत करना है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ मधुबन वालों से। क्या चाहती हूँ? एक एक मधुबन वासी पाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष है। मधुबन वाले को दादी से प्यार था, ये दादी कहती थी, मुझे पता है। तो प्यार के रिटर्न में मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, पापा ने कहा, मम्मा ने किया, ये तो मधुबन वाले जान। ऐसे ही अमृत वेले से लेके रात तक हर एक मधुबन वाले अगर बाबा के साथ मेरे से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे मम्मा ने बाप की हर राय जीवन में लाई, ऐसे हमने भी लाई। तो हमसे अगर दादियों से प्यार है तो यही करके दिखाए, सवेरे से रात तक ऐसा कोई संकल्प बोल कर्म नहीं लावे जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो। ये हमारा संदेश खास मधुबन वालों को देना।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Good.

0: कभी कभी टेस्ट कर लेते हो क्या तेसठ जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वो इमर्ज हो जाते हैं। बेफिक्र बच्चा है, अगर अभी भी कान कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो, अपने पास पहुंच क्यों रख रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं पोच मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट, सब कॉन्शियस तो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपने बड़ी दादी को देखना, कितने न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते हैं, अगर

सारे लाइफ में हद का मैं पन से न्यारी रही है। उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं। क्यों इसके प्रैक्टिकल निशानी देख रहे तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन में रही, सेवा में साथी रही, तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? बार बने याद है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है? जानते हो?
2: So

0: स्मृति स्वरूप है और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आदि अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप सोचना स्वरूप नहीं हो, इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मुहूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: तो अभी बाप दादा आज का या जब तक फिरा ना हो तब तक का होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो, आत्मा का तो आत्मा को निजी संस्कार आत्मा के जो है उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि में देखो। तो ये जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे, बातें समाप्त हो जाएंगी। किसी की क्या भी देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है। शुभ भावना शुभकामना देना और शुभ भावना शुभकामना लेना उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताती है, पहले भी पता है, तो कहाँ संगठन में कभी कभी परदर्शन परचिंतन और परमत के तरफ आकर्षित हो जाते। अभी इन तीन पर को काट दो, एक पर रखो, वो एक पर है पर उपकार। पर उपकार करना है, परोपकारी है ब्राह्मण का स्वभाव है, परोपकारी। परदर्शन नहीं, ये पर काट दो, ये तीनों बहुत नुकसान देते, इसीलिए अपना स्वमान सदा ये याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है, पर उपकारी। तो दूसरे सीजन में बाप दादा हो सकता है, हो सकता है। हाथ उठाओ, हाथ उठाने में तो ठीक। तो क्या करना? अच्छे बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो पोता मेल देके और अपने पोती को खाली करके गुड नाइट करना। बाप से भी और बाप की याद में आप भी सो जाना, आपकी नींद बहुत अच्छी हो। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, तो आपको बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो धर्म राजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सच्ची दिल

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है, बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिखिला देखो
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: रोज अमृत वेले जी करो, मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है या चल रहे है, पहुंच ही जाएंगे हो ही जाएगा, ऐसे संकल्प तो नहीं रखते। तीव्र पुरुषार्थ ही बनो, पुरुषार्थ ही तो है, लेकिन चेक करो तीव्र पुरुषार्थ ही है। बाप दादा को प्रिय कौन लगते हैं? तीव्र पुरुषार्थ ही तो हर एक बच्चे को क्या बनना है, तीव्र पुरुषार्थ ही बनना है। हाथ उठाओ, बनना है, बनना है या बन के चल रहे हो? ये लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना, तीव्र पुरुषार्थी रहना ही है, औरों को भी साथ देना है। ये लक्ष्य है, जिसके दिल में ये लक्ष्य है वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी उठाते। चलो, थोड़ा ठंडा है तो दीवार कर देना। योग दिन प्रतिदिन माया भी अपना काम करती रहती, लेकिन आप सब बच्चे कौन हो? आपका टाइटल क्या है? मायाजीत। कौन मायाजीत बनने वाले हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने हाथ उठाए। बाप दादा को खुशी होती है कि हिम्मत तो है, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप तो है। हिम्मत नहीं हारना, बाप दादा का सहयोग पहले, हिम्मत हारा तो सब गया। हिम्मत है तो हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Coffee.

0: कोई की करने पहुंचने लगी। अभी इसको और शक्तिशाली बनाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन बदलेंगे। हाथ उठाया पक्का कि कहेंगे मैंने बहुत कोशिश की नहीं हुआ, ये जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी अचानक के खेल बहुत होने हैं। और बाप दादा के चाहता है एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले, इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है शुभ भावना रखी, और कोई नहीं बदलता करनी है ना। अच्छा, और रोज देखता रहेगा, बाप दादा को देखने में देरी नहीं लगती। ठीक है ना? अच्छा,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय विदेशी, जय भारतवंश, है तो दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो, हिम्मत समायो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Because

очи.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संगम युग श्रेष्ठ है वो, ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन ये रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुख में बना दे, ये उमंग नहीं आता दुख देखने जाए थे दूसरों का दुख देख करके भी। आपके भाई है, आपके बहने है, दुख देखना अच्छा लगता है, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सब सेवा में लग नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सी फॉर बनो, चाहे दृष्टि से चाहे अनुभूति से चाहे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा धन माना, धन जो भी है, कुमारों के पास तो धन ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो भी है सब आपका है। ये वादा किया है, अच्छा हाथ दिला रहे, ठीक पक्का किया है। धन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आपसे, ये भी किया है, किया है। अच्छा, तो जब धन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर मेरा पन है कुछ होता ही क्या? धन्यवाद।

0: hediye arttı. Abi pas.
1: Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलार है, चाहे नंबर वन नहीं है लेकिन नंबर वार है, तो भी बाप दादा का हर कलब का सिक्की लता बचे। इसलिए अपने सिक्की लते बनने के भाग्य को सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से आर्डर करो, मेरा बाबा बाप अवश्य बता हुआ, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना। मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं दे। दिल साफ मुराद हासिल, किचरे वाले दिल में बाप नहीं आता। और समय से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण बोल, अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है, प्रसाद को कोई मैपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैपन को समाप्त करो। ये सूखा मैपन है। अलौकिक जीवन में ये मैपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सबसे समझदार तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो नहीं करना है वो नहीं कर लो बस। बाप दादा अभी विश्व परिवर्तक बनने के लिए हर एक को निर्विघ्न बनना और साथियों को बनाना विश्व परिवर्तकों, तो एक साथियों को बनाना क्या मुश्किल। तो हर एक ध्यान रखना हमको अपना वायुमंडल, साथियों को निर्विघ्न बना नहीं विश्व।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्रह्मांड परिवार सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

months.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah. इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज चेकिंग करेंगे ना रिजल्ट, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहता है संस्कार के सब्जेक्ट में नंबर वन जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे। टेंशन में आए ना तो हो जाए, लेकिन अटेंशन देना ऐसे नहीं हो जाएगा, लेकिन अटेंशन देना पड़ेगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा देख रहे हैं आपके अनेक भाई बहने अपने जीवन से
2: बिच्छू।

सर्वशक्तिवान

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: लक्ष्य

Srap.

nos tomó a una. Cogimos que el

Až tomu a on není.

Sechan, Boticara.

Voix de jeune.

संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में

веселее, мам.

0: summon.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा भी रोने डर याद है, एक सेकंड में
4: सकाश।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: से रुका जो भी अपन ने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, सब चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वो गलती नहीं है? उसने समय अनुसार

shit.

Beat.

मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क।

0: साधन।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए। अचानक ही हुए ना। सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, सोचा था। अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे 2000 तो सोचा था, वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेंगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुना ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं, अलबेले कभी नहीं बनना किसी भी बात में। चार सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट, उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो, जितने चाहिए जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कम से कम हर एक अपरत वेला तो मनाते हो, जो अपरत वेला रोज जरूर मना।

हर जगह अमृत वेले का साधन तो अपनाते हैं, कोशिश अच्छी कर रहे हो। अमृत वेले को मैं तो देते हूँ, लेकिन आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है। उसमें जरूरी

0: सभी खुश है कि बीच में माया भी जान से लेती है। खुशी नहीं कमाना, माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाए। अगर बाप को नहीं पहुंच सको तो अपने निमित्त परों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बनाना नहीं तो आदत पड़ जाए। ये अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है। तो अवश्य इस समय को सफल कर ले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये आशी है दृष्टि लेना भगवान से, समर्पित वालों की ये आशी है।
2: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक बात, बाप दादा ने मैं चारटी में देखी, मैं चारटी, मैं नारचनी में चारटी, सरकम डांस साफ

下一次。

Oíme. Yo quiero pamiota. Oíme. Man sabe, baby.

baby.

Some minute.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस बात में खुश होते हैं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ऐसे मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद नहीं

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले। इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे, तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा हजार कदम

0: ऐसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना, कोई बढ़िया गिफ्ट होती है उसको बार बार देखती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्म योगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज कर। अच्छा, गिफ्ट ली गिफ्ट दी, अच्छा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देवान भी है और भिन्न भिन्न प्रकार के जानना।

0: नेचुरल और सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनाओ जो लक्ष्य योगी जीवन का, जो लक्ष्य अनुभवी मूर्त बनने का, वो लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो, और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उनका प्रमाण स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, वहां अपने में समर्थि हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी, कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चैलेंज

Yes.

0: विजय। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जीवन में परवाह हो, इसलिए चमक का खाता कोई कोई समय का जमा होता है। लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी तरफ रहना नहीं चाहिए, संदेश देना चाहिए और फॉरेन की सेवा ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी, कोई भी चाहे शाखा ही है लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। क्यों से आज पर भी नहीं अब क्योंकि समय पांच होता

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल की मुरलियाँ

7 गए, अटेंशन बढ़ा है, इसलिए अटेंशन बढ़ा है तो टेंशन संत

नोट करना, सुबह को उठते ही चेक करो, सब

citrome. Sada. Double touch. Toi pour me. Kairaje.

Tessa coi Damon. Tu Aska. Esebio Sherit Kaisab Sherit.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है, सदा मुश्किलता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी दो शब्द याद करो, माया से इशारा करो गेट आओ और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। ये दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है, अब तो खर्चा नहीं, घर के नजारे मन में बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जो सदा खुश रहते हैं वो हाथ उठा, सदा खुश। कोई बात हो जाए तो भी खुश।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर पाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा।

fartarse, raya

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा।

स्वरूप में रहे। जय कर्म इंद्रियां

समाचार लेते थे।

0: वांछित करने से कर्म इंद्रियों को अटेंशन लेते हैं कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा, तो आत्मा राजा बन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सभी बच्चों से

छोड़ते रहिए, चाहे

0: आपको मुबारक देगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मेजॉरिटी बच्चों का फर्श का पोता मेल देखा, क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा, बाप दादा ने देखा कि बेटा ने और समाने की शक्ति कम है, मिटाते भी है, उल्टा देखना सुनना सोचना बीता हुआ भी मिटाते हैं, लेकिन जैसे आप कहते हो ना, एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस। मिटाते हैं लेकिन माना के प्लेट को, स्लेट को, कागज को, कुछ भी को पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन फिर समय पर निकल आता, इसलिए जो चार शब्द बाप दादा ने सुनाया वो सदा नहीं चलते। अगर मानो बिल्कुल मन की प्लेट को, कागज को नहीं मिटा तो पूरा साफ न होने के बदले अगर आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो स्पष्ट होगा, अर्थात सर्वगुण सर्वशक्तिया धारण करने जाओ तो सदा और फुल परसेंट में होगा, बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो। तब ये शक्तिया सेज कार्य में लगा सकते हो। कारण ये है मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं, थोड़ा थोड़ा भी जलन व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन समाई हुई है सूक्ष्म रूप में, फिर समय पर साकार रूप में आ जाती। समय अनुसार पहले चेक करो अपने को, चेक करना दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, यूं दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। मुख्यम रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाते फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर समाने की शक्ति नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ, नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता है।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आगे के लिए अब दीवार पुशारत कर, आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ सफलता की चाबी, तो बाप दादा जो भी आज बचे आए हैं उन लोगों विशेष दृढ़ता की चाबी की So

0: आगे बढ़ाती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की तो रायल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। स्लोगन तो आपका बहुत अच्छा सबको लगता है, आप बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है बदलना। पुराना स्लोगन है ये तो, नए नए रूप, रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। आप अपना ध्यान रिलैक्स कर, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दादी, आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है। और भी रायल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे, यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया के भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत आ रहा है समीप, उतना वो नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुके, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, फिर खुद झुक जाएंगे। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, शुभ भावना बिट नहीं जाए। कभी भी कोई दुख दे, आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को पाप समान बना
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा ने जमा क्या खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा। समय पर ठीक हो जाएंगे, जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन, समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनेगा, इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामानुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतजार रचना करे न कर। मास्टर रचता समय का इंतजार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो, टाइम पर सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज

फरिश्ता कर करम करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं हो, कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देंगे। जैसे ब्रह्मा

just so

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yes.

Síganme, beleza. Sayog Himat Vela.

0: सभी की भ्रमण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय सबका रजिस्टर देखते हैं ना, उसको बचाना अर्थात समापति का समय समीप लाना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Mario.

切。

సంతోషం మడిన స్వయంకోపీ పిడియా.

Son.

ശക്തി. Just so.

Our son, Jin.

钱。Shut me up.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: झूले में झूलती है, झूलते हैं ना माताओं को बहुत नशा रहता है, क्या नशा रहता है हमारे लिए पापा है ना नशा। तो आप से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है और खास माताओं के लिए बाप आए। अच्छा खुश हो रहे सदा खुश रहना, ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक का रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं सदा का नशा।
3: Bye.
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

creepy.

Lagar.

बराबर है। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे, कौन रहेंगे? आप ही हो ना, चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतक। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो पाप मेरे कंबाइंड चिंता पाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्यों का पाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे मुरझाए हुए किसके बच्चे? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे बाहर आ जाए, लेकिन बाहर को भी आप रुई बना सकते। बाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो बाहर है वो रुई हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान को साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो, लेकिन सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है, तो समय में काम में लगाओ। कहने तक नहीं, काम में लगाओ तो सदा खुश नेमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब खुश नेमा चेहरा देखना हो, तो भगवान के सेंटरों पर देखो, करे चैलेंज।
0: सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ちょっと。

Neşek diyor duvara. Sakaştım. Cesiz.

一起。

se vacó. Fierté ya le fertice. Fallo mandarlo.

بيهرب. يفلو Varsa mok is baton se mok tito de lao.

சிறக்கும். Cinco.

0: साइटसीइंग देखने के लिए साकी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के दिन सभी के दिल में आगे आने वाले वर्ष के लिए छोड़ना है और क्या बनना है।

skill.

बच्चे के लिए। क्या चाहता है?

up.

naja, Pläne, naja, na.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सेवा तो करी लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
3: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना है। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से, ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं अभी भी, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रतिज्ञा करना ही है। तैयार हो ना? तैयार हो? बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी कर इतना तो है ही, नहीं तो नहीं तो कैसे है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जिम्मेवार होते हैं।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल चाय संसार में, चाय भ्रमण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार, मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत, मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा तो नहीं किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत तो परवस आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, आप ये हो का, आपको समृद्धि दिलाई, आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ समृद्धि से आप में समृद्धि आई, परिवर्तन किया। हिम्मत से समृद्धि दिलाओ, समृद्धि समृद्धि सुते ही दिलाएंगे, समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा सेवा की रुचि, सेवा का उमंग, उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो, मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो, और कल्पना अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए, तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अब इसे संस्कार डालो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ए ब्राको, सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वो रिजल्ट लेके, चाहे 3 दिन का प्रोग्राम कराओ चाहे 1 दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों और जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों और एक समय लक्ष्य एक, समय एक और चारों और देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम लक्ष्य को अनुभव बनाने का। सब सुन के चले नहीं जाए, कुछ अनुभव करके आप लोग भी बाप के बने कैसे, कुछ ना कुछ अनुभव किया जाए प्यार का, चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का आचान करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ, अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही हुई।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थ, सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना तो टाइम लगता है। कौनो सभी सहज पुरुषार्थ बोलो। याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Sorry.

0: conserva a tua mão quebrada. Se vadari. Ora, a sapate. Babkisat. Se va.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सौगात कोई वापस लेते हैं क्या? कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। कारण क्या? कारण अगर पूछे तो जवाब बहुत अच्छा देते हैं। कहते हैं जानते भी है मानते भी है लेकिन क्या करे वापस आ जाते। सोचो से प्यार है ना तो प्यार के कारण जो बाप कहते हैं वो करने चाहते हैं। ये बाप के पास भी रिजल्ट आती है लेकिन लाना

0: अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो उसकी निशानी है दृढ़ता, सफलता की चाबी। तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसीलिए संपूर्ण सफलता नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: See.

forsaken. बीच बीच में निकाल, अभ्यास करो, साइलेंस का संकल्प किया।

इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। एक सेकंड का अभ्यास करो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Cena.

Sarvashaktivan Atmao.

0: esa verdad.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: गुप्त नंबर आगे होता है पता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

समय पाप के संग के रंग में रहते हो ना, तो उन्होंने भी रंग तो बनाया लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो इस स्थूल रंग बना दी। Yes.

Arte.

0: देखो द्वापर से जो भी आई है पवित्र बने है, लेकिन डबल पवित्र कोई नहीं बना। शरीर भी पवित्र, चक्कर घूमो, द्वापर से आए, द्वापर से अब तक देखो कोई डबल पवित्र बना है? तो क्यों आप डबल पवित्र महान बने हैं? क्योंकि आपको रंग कौन सा लगा? परमात्मा के संग का रंग। तो जैसे परम आत्मा पवित्र, लेकिन वो भी डबल पवित्र नहीं। आपका भाग्य है क्योंकि आप रहते ही परमात्मा के संग में हो। संग का रंग इतना पक्का रहता है जो डबल पवित्र बन जाता। होली का दूसरा अर्थ है होली, हो गया जो बीता सो बीता। होली तो होली करना आता है जो हो चुका वो हो चुका। होली शब्द का अर्थ क्या निकलता? बीते सो बीती। इससे होली 21 जन्म रहते हो, एक जन्म नहीं, क्योंकि संगम के एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों का है। यहाँ आपने अगर एक सेकंड या एक मिनट सफल किया तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा। ऐसी होली मनाई है, होली करना आता है। जो पीता वो पीत गया होली। और तीसरे रोपड़े का क्या करते हैं? पहले जलाते हैं, फिर बनाते हैं। तो आपने भी क्या किया? योगाग्नि से अपने कमजोरियों को, संस्कारों को जो अनेक जन्मों के उल्टे संस्कार हैं, उसको योगाग्नि से जलाया है ना, जलाया है कि अभी भी जला रहे हैं? जलाया है जो समझते हैं हमने योगाग्नि से अपने पहले के संस्कार जलाया है, जल गए, वो हाथ उठाओ, जल गए कि अभी भी आते हैं? थोड़ा थोड़ा तो आते हैं। बाप दादा के पास जब अपना चार्ट भेजते हैं ना, तो कहते हैं बहुत तो चले गए, चतुर है ना कहने में, कहते बहुत तो खत्म हो गए, कभी कभी तो राय मर्ज हो जाता है। लेकिन चलना माना चलना, चलने के बाद नाम निशानी नहीं रहता, मारने के बाद शरीर का यादगार तो दिखाई देता है ना, लेकिन चलने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ जलाया, मारा नहीं, जलाया अभी, जो बिल्कुल नाम निशान खत्म। तो आप भी सब अपने को नोट करो, संस्कारों को मारा है या मर्ज हो जाते। लेकिन भक्तों ने काफी सब की है, आप जलाते हो वो भी जलाते। फिर बनाते बिना जलाने के, मनाते नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी, ऐसा नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का सब कुछ हो गया। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है, चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति में रहे कि सब
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

my

Vanessa.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक जन्म

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समस्याओं से

ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना परिवर्तन की

semi-sreshtrata.

स्वरूप से समान संपर्क में हो, हर समय चेक करो see.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हाँ तो बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों। क्योंकि बाप दादा देखते हैं, सोचो जो आप कोटो में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना। तो बाप
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारिया, फील करेंगे थोड़ा। फॉलो फादर, ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशील समय सहन करना पड़ता है। उस सहनशीलता के देव व देविया होना हो। सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। अमर भव का वरदान
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने आज अमृत वेले चक्कर लगाए, तो क्या देख

perdí su aroma. Al pamboran. Escoca.

Seperti merak teo. Uske swarup ke adbhut me khoje.

or shall it maybe both?

0: Aquí este té. Sada. Sabayoy ready. Uski shikil. Chalan.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेकंड में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती

अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे बैठ।

लास्ट नंबर वाले बच्चे को

मास्टर नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखने चाहते, गिरा हुआ मुरझाया।

Wasser.

बीत गया, अभी समय की समीपता

ऐसे समय

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप लोग छोड़ने में तो जय भाई जय बहने, जो पीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले पाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ की कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
2: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
1: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा, सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं नहीं करूं करूं, मैं टाइम नहीं देता। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो, होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को। सभी का एक ही संकल्प हो, होना है, क्यों क्या नहीं होना ही। तो इस विधि से सब सहज होता है।
2: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
1: बस 10 मिनट आप सब निमित बने हुए आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज बाप दादा क्या चाहते बाप, समान बनो, फॉलो फादर, क्योंकि समय की हालत दे तो हलचल में आप ही रहिए और आनी भी है। इसलिए बाप दादा बच्चे को यही शिक्षा देने चाहते हैं कि सदा खुश रहो और खुशी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: चेक करो ज्ञान स्वरूप बनाओ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बनाओ। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट और माइट वाला यथारथ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है गर्भ इंद्रियोचित बनना। हर गर्भ इंद्री पर स्वराजदारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। इससे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली हो। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कल्पना करे, चाहे सने संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।